नमः। ओम श्री साई सर्व भय निवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तंभ सूत्राय नमः।

ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय